0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6।

शहादत। इसके बाद मूता ही में फरीकैन के दरमियान टकराव हुआ और निहायत तल्ख लड़ाई शुरू हुई। 3,000 की नफरी 2,00,000 टिड्डी दल के तूफानी हमलों का मुकाबला कर रही थी। अजीबोगरीब मारका था, दुनिया फटी फटी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब विमान की बादे बहारी चलती है तो इसी तरह के अजायबात जहूर में आते हैं। सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के चहीते हजरत जैद बिन हारिस ने अलम लिया और ऐसी बेजिगरी से लड़े कि इस्लामी शहबाजों के अलावा कहीं और इसकी नजीर नहीं मिलती। वो लड़ते रहे यहां तक कि दुश्मन के नेजों में गत गए और जामे शहादत नोश फरमाकर जमीन पर आ रहे। इसके बाद हजरत जाफर की बारी थी। उन्होंने लपक कर झंडा उठाया और बेनजीर जंग शुरू कर दी। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो अपने सुर्खों से आ घोड़े की पूछ से कूद पड़े, कूचें काट दी और वार पर वार करते और रोकते रहे, यहां तक कि दुश्मन की जरब से दाहिना हाथ कट गया। उसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ में ले लिया और उसे मुसलसल बुलंद रखा, यहां तक के बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकी मांदा बाजुओं से झंडा आगोश में ले लिया और उस वक्त तक बुलंद रखा जब तक खलते शहादत से सरफराज ना हो गए। कहा जाता है कि एक रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके दो टुकड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें उनके दोनों बाजुओं के वज जन्नत में दो बाजू अता किए जिनके जरिए वो जहां चाहते हैं उड़ते हैं। इसलिए उनका लकब हजरत जाफर तैयार और जाफर जुल जनाहीन पड़ गया। तैयार का मानी उड़ने वाला और जुल जनाहीन यानी दो बाजुओं वाला। इमाम बुखारी ने नाफे के वास्ते से इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला का यह बयान रिवायत किया है कि मैंने जंगे मूता के रोज हजरत जाफर के पास जबकि वो शहीद हो चुके थे खड़े होकर उनके जिस्म पर नेजे और तलवार के 50 जख्म शुमार किए, उनमें से कोई भी जख्म पीछे नहीं लगा था। एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमरू का यह बयान इस तरह मरवी है कि मैं भी उस गजवे में मुसलमानों के साथ था। हमने जाफर बिन अबी तालब को तलाश किया तो उन्हें मक्तुलीन में पाया। उनके जिस्म में नेजे और तीर के 90 से ज्यादा जख्म पाए। नाफे से उमरी की रिवायत में इतना और इजाफा है कि हमने ये सब जख्म उनके जिस्म के अगले हिस्से में पाए। इस तरह की शुजात और बसालत से भरपूर जंग के बाद हजरत जाफर भी शहीद कर दिए गए। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम उठाया और अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़े और अपने आप को मुकाबला के लिए आमादा करने लगे, लेकिन उन्हें किसी कदर हिचकिचाहट हुई, हत्ता कि थोड़ा सा गुरेज भी किया, लेकिन उसके बाद कहने लगे, ऐ नफ्स कसम है तू जरूर मद्दे मुकाबल उतर, ख्वा नागवारी के साथ ख्वा खुशी खुशी, अगर लोगों ने जंग बरपा कर रखी है और नेजे तान रखे हैं तो मैं तुझे क्यों जन्नत से गुरेजा देख रहा हूं। इसके बाद वो मुकाबले में उतर आए। इतने में उनका चचेरा भाई एक गोश लगी हुई हड्डी ले आया और बोला, इसके जरिए अपनी पीठ मजबूत कर लो क्योंकि इन दिनों तुम्हें सख्त हालात से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने हड्डी लेकर एक बार नोची, फिर फेंक कर तलवार थाम ली और आगे बढ़कर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। समईन, आज की इस नशिस्त से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सैयद इब्रार अबुल हसन को इजाजत दीजिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: मोहतम सुनने वालों, हम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आखिरी जो मेरा हमारा जो हिस्सा है इस प्रोग्राम का, उसमें मैं चाहूँगा कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से ये पूछूँ कि आप जो चीज़ें बनाते हैं, क्या इनकी आपने पैकेजिंग का भी कभी सुना? कहते ना, सीइंग इज बिलीविंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बड़ी दिलफरेब होनी चाहिए, दीदाजेब होनी चाहिए, नज़र को भली लगनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या सोचा? पहले मैं डॉक्टर साजिद से ये सवाल पूछूंगा।
2: जी सर, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बताया और डिग्री का इंट्रोडक्शन दिया, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कम्प्रीहेंसिव डिग्री है। इसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसके एनालिसिस से लेके फूड पैकेजिंग तक। तो फूड पैकेजिंग इज़ अ फुल कोर्स दैट इज टॉट इन वन सेमेस्टर। तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाया जाता है इसी परफॉर्मेंस के अंदर, कि बच्चे प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग भी डेवलप करते हैं। बच्चे पैकेजिंग खुद डेवलप कर रहे हैं अपनी, उसके ऊपर लेबलिंग कर रहे हैं। तो फूड लॉज एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो अ कोर्स, जिसके अंदर हम सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ का बताया जाता है, उसके अंदर फूड लेबलिंग का बताया जाता है। बच्चे उसको देखते हुए और इंटरनेशनल लेबलिंग और नेशनल लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए खुद लेबलिंग करते हैं। उसके अलावा हमारा ऑरिक, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑरिक इज ऑल्सो सपोर्टिंग आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग पैकेजिंग और इन बाइंग पैकेजिंग। तो वो सारा हमारा उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं।
1: मैं मारिय से पूछना चाहूँगा, मैं मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं इस मार्केट में इतनी कैलेसनेस है कि ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। तो आप के प्रोडक्ट में कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि कम्पीट भी कर सकें ऑलरेडी मौजूद प्रोडक्ट्स को और उनको नीचा भी दिखा सकें? कुछ ऐसे मुझे चीज़ें बताइएगा।
3: जी सर, जब हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि वो बजट फ्रेंडली हों और एक आम इंसान तक पहुंच सके। जैसे सर, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन बच्चों में लैक कर रहा होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर ये चीज़ें हम बताते हैं कि आपने इन चीज़ों की, इन न्यूट्रिएंट्स की फोर्टिफिकेशन करनी है या इनरिचमेंट करके आपने अपनी प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है और इस प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक आम इंसान तक पहुँच सके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो मेन मिशन ही यही है कि हमने फूड इनसिक्योरिटी का खात्मा करना है, ताकि हर आम पाकिस्तानी के पास हमारा जो फूड है वो पहुंच सके। सर, जब भी हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते हैं अक्सर फूड प्रोडक्ट्स का, तो उसमें एरर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन क्लासरूम। तो बच्चों को फिर बताया जाता है कि आपने कुछ भी न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर ऐड किया है उसको एक्यूरेटली लिखना है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर सर्विंग उसकी कैलोरीज कितनी है, और जो सूटेबल और परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आपने वाजे तौर पे लिखना है। बच्चों को इसके साथ साथ गाइड भी किया जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई एलर्जन मौजूद है तो आपने उसको हाईलाइट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो आपने उसको भी हाईलाइट और क्लियर कट लिखना है कि दिस इज़ नॉट फॉर दैट फूड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल दैट्स नॉट फॉर प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को क्लियर गाइडेंस दी जाती है। सर, जो हमारा FIC हुआ उस पर हमने देखा, बच्चों को प्रॉपर हमने असेस किया कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। तो हमने देखा हमारे प्रोडक्ट्स, बच्चों ने प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स थे ऑन FIC, और उसके साथ साथ पैकेजिंग भी बच्चों की कमाल की थी। सर, अगर हम न्यूट्रिशन लेबल्स को देखें तो एज अ डाइटिशियन मैंने उन प्रोडक्ट्स को देखा, लेबल्स को देखा कि किस कहीं कोई एरर तो नहीं, बच्चों ने न्यूट्रिशन फैक्ट और उसके साथ साथ जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो भी एक्यूरेट लिखी हुई थी। तो हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो इसी चीज़ पे होता है कि बच्चे एक्यूरेट कॉन्टेंट्स लिखें और ख़ुद भी आगाही हो उनको और उनको पता हो कि हमारी डिमांड क्या है और हमने उसको किस तरह से मीट करना है।
1: बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतना अच्छा बताया। कम से कम ये मुझे आपका पहलू बहुत अच्छा लगा आपके डिपार्टमेंट का, कि एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी होती हैं लेबल के ऊपर, अक्सर लोगों की मिसलीडिंग होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल यही आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा मेरे नज़दीक। आखिर में मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मिस मारिया से, कि यहाँ जो बच्चे आएंगे मैम, उनको यहाँ ऐसी क्या चीज़ स्पेशल मिलेगी जो कि बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगी?
3: थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। there are multiple reasons for choosing UCP for FST and HND. Kuch main usme se reasons highlight karungi, and I would love to highlight that ke sir hamare time pe jab main graduated hui thi to humne theoretical work hamara bahut zyada tha, lekin jo practical exposure tha wo hame bahut kam diya jata tha. Lekin ab jo hai humne cheeze kafi had tak modify kar di hain, cheeze kafi had tak upgrade hui hain. Jaise sir hamari abhi humne ek list banayi hai events ki jo ke for coming students ke liye humne plan kiya hai ke jab students hamare next semester start hoga to usme hum nutrition symposium and guest lectures rakhenge. Pehle bhi hota aaya hai, mazid hum isko thoda sa strengthen karna cha rahe hain taaki industry mein public health experts, dietitians aur nutritionist hamare paas aaye aur emerging trends related to nutrition aur food science bachchon ke saath discuss kare. Meanwhile sir hum plan kar rahe hain ki hum न्यूट्रिशनल केस स्टडी चैलेंज के नाम से एक इवेंट रखें, जिस तरह से हमारा FIC होता है जिसमें प्रोडक्ट बच्चे डेवलप करते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो रियल टाइम जो केस स्टडीज हैं वो इंट्रोड्यूस कराएं और उन पे डाइटी इनोवेशंस करके डाइट थेरेपी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं कि किस तरह से वो मेडिकल प्रॉब्लम की न्यूट्रिशनल थेरेपी करेंगे. सर हमारे मल्टीपल प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आप जो स्टूडेंट्स आए हम उनका इंटर यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन क्विज कॉम्पिटिशन हो ताकि बच्चों को ज़्यादा से मेन हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें. बच्चे को पता हो कि अगर वो क्लास के अंदर न्यूट्रिशन असेसमेंट के नाम से कोई कोर्स पढ़ रहा है तो वो रियल टाइम हॉस्पिटल्स में जाके वार्ड्स में जाके पेशेंट की असेसमेंट किस तरह से करनी है. तो सर ये हमने अपने एकेडेमिया और करिकुलम के अंदर ये कंपल्सरी कर दिया है कि बच्चे थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज़रूर लेंगे.
1: मैम बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रैक्टिकल वर्क का जिक्र किया. साइंस तो विदाउट लैब मुकम्मल नहीं होती. आखिर में डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साजिद से, कि बताइए कि आपकी लैब्स में क्या ऐसी चीज़ है जो इन लैब्स को दूसरी यूनिवर्सिटियों की लैब से मुमताज़ करती है.
2: जी सर, थैंक यू. इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन था मिस मारिया आरिस से कि प्रोडक्ट्स हमारे क्यों डिफरेंट होंगे और किस तरह से वो हमारे मार्केट को कैच करेंगे, उसमें जस्ट मैं आपको जस्ट इतनी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं जो हमारे लोकली इंग्रेडिएंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं और उनकी कॉस्ट उसी तरह से हमारी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाते हैं. जस्ट मैं एक उसमें एक एग्जाम्पल है, जिस तरह से ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट जो है उसका एक बड़ा चार्म है और जो अब भी आप मार्केट में विजिट करें या मॉल्स में विजिट करें तो आप शेल्फ्स पे उनको एक सेपरेट प्लेस पे देखते हैं और उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो एज एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और बड़ी हाई प्राइसेस होती हैं कंपेरेबल टू हमारे लोकल प्रोडक्ट्स. तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट से इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो हमारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को बीट कर रही हैं और वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरा आपका क्वेश्चन है जिस तरह से हमारे लैब और इक्विपमेंट के रिलेटेड, तो मैंने जिस तरह से आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्ड हैं और जिसमें हम बच्चों ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को उन पे इतनी हो कि बच्चे जब फील्ड में जाएं तो दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन रिसर्च डिपार्टमेंट, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दे कैन ईजिली ज्वाइन एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन अथॉरिटीज़. तो हमारे पास जिस तरह से अभी प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है तो हमारी फूड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन की डिग्रीज दोनों इस तरह से हम बच्चों को वेल इक्विप करते हैं कि बच्चों को दोनों डिग्रीज के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आए. न्यूट्रिशन में अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन क्लिनिक हम लॉन्च कर चुके हैं जिसके अंदर जो हमारे पास फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनके अपने क्लिनिक्स हैं तो यहाँ पे बच्चों को एज एन इंटर्न्स वो बच्चों को सिखाते हैं. दूसरी तरफ हम आएँ तो फूड डिपार्टमेंट में हम फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके एनालिसिस की तरफ बच्चों को हम लेके जाते हैं.
1: डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया. मौजूद सामईन, प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद मंजूर और मिस मारिया हारिस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आके अपने डिपार्टमेंट को बड़े अहसन तरीके से तारुफ करवाया और प्रोग्राम को भी बड़े खूब तरीके से बयान किया. जब तक हम अगले प्रोग्राम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरी तरफ से यानी आपके आज के मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर की तरफ से आपकी आमद का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी,
2: थैंक यू.
1: और इसी के साथ आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और देखिएगा किस तरीके से न्यूट्रिशन और डाइट टेक्टिक्स के बारे में उन्होंने हमें बताया. अपना बहुत ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।
0: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।

0: 92.6।
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

0: www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 96 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और आज हम गुफ्तगु कर रहे थे कि जो मिनोरिटी में लोग मौजूद होते हैं, जो कि लीडिंग पर्सनैलिटीज होते हैं, और वहाँ ही हमारे पास मेजोरिटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके अंडर या बींग अ टीम काम कर रहे होते हैं। तो दोनों में कौन सा बुनियादी तौर पे बेसिक डिफरेंस है कि कुछ लोग लीडर्स बन जाते हैं, कुछ टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो हमारे पास जो थर्ड स्किल है आज डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। देखें, बींग अ लीडर आपने लीड करना है, आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टीम। आपने अपना मैसेज, अपना मकसद, अपना विजन अपनी टीम तक पहुंचाना है। तो बुनियादी तौर पे ये बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आपके पास ऐसी स्किल्स हों कि जब आप बात करें आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी ऑडियंस में आपकी बात इम्पार्ट हो, आपके जो तबके फिक्र के लोग हैं आपकी बात इम्पार्ट हो, आपकी टीम में जब आप एक अच्छी गुफ्तगु करना जानेंगे या आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं तो आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। तो अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छे लीडर के पास हमेशा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अगर हम अपनी फोर्थ एबिलिटी के बारे में बात करें कि फोर्थ ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो एक लीडर को बनाती है, और एक लीडर के पास ये एबिलिटी होनी बेहद ज़रूरी है, दैट इज़ द डिसेसिवनेस। आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर मैं अगेन उसी एग्जांपल पे आऊं कि जब हम क्लास में बींग अ तालिब इल्म हम मौजूद होते हैं, बींग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ओपन एंडेड रोड्स हैं कि अगर हम जाना चाहते हैं सोसाइटीज़ की तरफ, हम मीडिया क्लब, डिफरेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह आते हैं, क्लास लेते हैं, घर चले जाते हैं और सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, उनकी रूटीन ऑफ लाइफ ये होती है। लेकिन वहाँ ही हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, टीम्स में काम करते हैं, करते करते करते सब कोर देन कोर, और देन आपको वो प्रेजिडेंशियल बॉडी में नज़र आते हैं। वाई, मतलब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में कि वो लीड करना चाहते हैं। सो बींग अ लीडर, आपके पास अच्छा डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी चांस आता है ज़िंदगी में, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, आप अपना फ़ैसला खुद कर सकें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। विजन सिर्फ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस विजन पे जब आपको फ़ैसला लेना पड़ता है वही एक सबसे आप कह लें अमेजिंग मोड होता है आपकी ज़िंदगी का, जब आप डिसाइड करते हो। बुनियादी तौर पे अगर नाइन्थ क्लास में ही आप देख लें तो आपके पास एक टाइम आता है कि आपको डिसाइड करना होता है आपको कंप्यूटर चूज़ करनी है या बायो चूज़ करनी है। सो अगर आप में डिसेसिवनेस है, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका विजन क्या है आगे। अगर आप कंप्यूटर रख लेते हैं तो उसका आगे स्कोप क्या होगा, क्यों आप कंप्यूटर रखने जा रहे हैं। सो ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते रहते हैं जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। सो ये डिसाइसिवनेस की क्वालिटी बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इसी के साथ साथ एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि हम छोड़ जाते हैं लीडर बनने के इस सफ़र में, दैट इज़ द अडेप्टबिलिटी। आपके अंदर अडेप्टबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलना है। आप एक गरूरी अंदाज में या गरूर में आप बींग अ लीडर ही आप चलते जा रहे हैं और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अडेप्टबिलिटी की पावर आपके पास नहीं है, आप अच्छे लीडर नहीं हैं। लीडर हमेशा दिलों पर राज करता है। लीडर इज़ नॉट लाइक दैट कि जो खड़ा होकर डिबेट करे, कम्युनिकेट करे, अपना विजन डिस्क्राइब करे और चला जाए, दैट इज़ नॉट द लीडर। लीडर वो होता है कि आप खामोश बैठे हों और लोग आपको वोट डाल रहे हों, आप चुप करके खड़े हों तो लोग कह रहे हों कि जब ये इंसान बोलेगा तो जो जैसे ये कहेगा हम वैसे करेंगे, लीडर इज़ दैट। लीडर खामोश भी बैठा हो तो वो लीडर होता है। इसी के साथ मुझे एक छोटा सा एक वाक्य याद आता है, ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। Once I was sitting in my competitive exam with the name of ISSB in Kohat Army Center, और मुझे मालूम पड़ता है कि वहाँ हमारे पास एक मेजर साहब थे, उन्होंने एक मिलिट्री प्लान डिस्कस किया। उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, मतलब एक 3D डिज़ाइन उन्होंने सामने रखा, उन्होंने कहा यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और आपको यहाँ से गुजर के पार जाना है। सो उससे पहले मैं सिर्फ अपने 12 लोगों की टीम से सिर्फ ये कम्युनिकेट कर रहा था कि यार देखो कुछ भी नहीं होता, यहाँ हम सब सिलेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहा था। سو وہ امپاور کرنا کچھ ایسا اثر کیا کہ میں اپنے اس ٹیسٹ میں بالکل خاموش بیٹھا تھا، میری خاموشی تھی، اور اچانک وہ جو میجر صاحب تھے وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ سب میں سے اگر آپ کو کوئی ایک لیڈر چوز کرنا پڑے تو آپ کس کو کرو گے؟ تو یقین مانے 12 لوگوں میں سے 9 سے 10 ووٹ میرے لیے کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا ہوا کہ یا ہم اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں یہ ہمیں لیڈ کرے۔ سو میں نے جب جج کیا اپنی پرسنالٹی کو کہ ایک دن پہلے سے میں ان سے انٹریکٹ کر رہا تھا، میں تو کسی سے خاص گفتگو بھی نہیں کی، تو کیسے مجھے انہوں نے لیڈر بنا دیا؟ سو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ہمیشہ لیڈر امپاور کرتا ہے، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے ڈسکس کرتا ہے، ان کے آئیڈیاز لیتا ہے، اپنے آئیڈیاز دیتا ہے۔ سو اڈیپٹیبلٹی نہایت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کانفیڈینس کتنا ضروری ہے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو لیڈ کرنے کے لیے، اور بینگ اے لیڈر آپ کے پاس کانفیڈینس پاور ہونا کتنا ضروری ہے۔ سو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: सुनना है तो इसे सुनो।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 ओनली ऑन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान। Number one live station.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. हमारे साथ आज मौजूद हैं वाजिद हुसैन साहब, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सन्स के. सर, हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड की, और आपने जिक्र किया कि आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों तरह के स्कूल्स में पढ़े हैं. तो आपके ख्याल में जो ये कम्युनिटी है स्पेशल पर्सन्स की, इनके लिए क्या बेहतर है? क्या सेपरेट एजुकेशन बेहतर है या इंक्लूजन बेहतर है? आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें?
2: हमारा जितना इसमें हमारा भी तजर्बा गुजरा है, हमने इनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो इंक्लूसिव ही है. वो एक सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब उसमें हम पढ़े हैं तो हमें ना वो एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे साथ ही अल्लाह की तरह से कोई कमी है. ऊपर से दोस्त ऐसे मिल गए इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी इतनी हेल्प करने वाली, कभी उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं किया. और हमने इसमें दूसरा तजर्बा ये किया है कि जो दूसरी तरफ हम आते हैं कि इनके स्पेशल एजुकेशन की तरफ या जो इनके इदारे बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं बच्चे, डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं. जब वो हमारे पास आते हैं, हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उनको ट्रेन करने में, उनको उसमें से निकालने के लिए कि वो बाहर किसी से बात करते हुए भी घबराते हैं. और इसके अगर बरक्स देखा जाए जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन में तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं ही नहीं हैं, और वो डिफरेंट टोटली एक चल रहे हैं कि वो एक ऐसे ही कि एक फुली मोटिवेटेड हैं, वो काम कर रहे हैं, और उनके एक विजन भी जो हैं उस हिसाब से तैयार हुए हैं. और सबसे मेरा तो ये है कि इसकी तरफ है.
1: हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब सबके साथ मिलकर पढ़ते हैं एक ही जैसे स्कूल में, तो एक तो ये सेंस पैदा नहीं होती कि हम कुछ डिफरेंट हैं लोगों से. बिल्कुल, यू आर नॉट, ऑब्वियसली आप भी उतने ही इंसान, इतने बाकी लोग हैं. तो ऐसे बच्चों को अलग पढ़ाना, वो तो उनके अंदर एक कम्प्लेक्स पैदा करने वाली बात है कि आप उनको कहें कि जी आप बाकियों से मुख्तलिफ हैं. और फिर जब जिंदगी इकट्ठी गुजारनी है तो आई थिंक एजुकेशन भी इकट्ठी होनी चाहिए.
2: बिल्कुल,
1: ये ऐसी चीज़ है कि जिससे दोनों तरफ के लोग सीखते हैं कि आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है, एक दूसरे को हेल्प आउट कैसे करना है, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में मदद मिलती है. क्या ऐसा ही है जी?
2: ऐसा ही है. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी, और एक दूसरे के हेल्प करना, एक दूसरे के बारे में जानना. क्योंकि जब हमने इसको नए तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपने स्कूल का वाक्य एक सुनाता हूँ कि हमारा जब हमने एजुकेशन के ऊपर काम शुरू किया, तो उसमें जब बच्चे हमने इसको इंक्लूसिव की तरफ लेके आए, तो उसमें जब वो नॉर्मल को हमने एडमिशन दिया, तो उनकी फैमिलियों का सबसे बड़ा रद्द अमल था. वो ये कहते थे कि ये क्या, इनमें बच्चे हमारे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी इन जैसे हो जाएंगे, या तो ये तो पागल हैं, या तो ये किसी और ही दुनिया के आए हुए हैं. तो एक बड़ा कि वो सबसे पहले कई एडमिशन वो लेके चले जाए. मैं क्या ले जाएँ, बेशक भाई हमने करना यही है. और इसमें ये किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह की ज़ात जो है कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. पर यह है कि इसके हमने उसका जब किया तो वही लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया, कुछ तो इसमें एजुकेट हो गए, कुछ नहीं हुए, वो अपनी तरफ ही बस कि नहीं हमारा ये बड़ा ज़रूरी है इसमें कि फैमिलियां जो जितने भी हैं इनके लिए अभी भी हमारी बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है. असल में ये सोचते हैं कि व्हीलचेयर के ऊपर कोई नॉर्मल बंदा बैठ जाएगा ना, वो भी डिसेबल हो जाएगा. और ये व्हीलचेयर समझ लो कि इस तरह की उनके लिए यह है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, या ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब है, या ये कुछ इस तरह के माइंड कॉन्सेप्ट बने हुए हैं. असल में ये व्हील है और चेयर है, सारी दुनिया इसी के ऊपर ही चल रही है. आप गाड़ी में भी जाते हैं तो आप देखिए, आप चेयर होती है, नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो वो सेम है. असल में कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है.
1: ऐसी है, असल में जो हमारे माशरे का बड़ा मसला ना, वो ये है कि हम डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते. अगर कोई हमसे डिफरेंट है तो उसे हम बहुत अजीब समझते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, क्या चीज़ है, हम शायद कोई अनोखी चीज़ है और हम कोई सुपीरियर बीइंग है शायद. तो हमारे यहाँ से जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करें, तब तक ये चीज़ें बेहतर शायद नहीं होंगी. हम अभी तक इस फेज़ में है कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ ख्यालात रखता है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते.
2: बिल्कुल ऐसा ही है.
1: और बातें लड़ाई झगड़े से लेकर मार कुटाई तक चली जाती हैं, और इवन अल्लाह माफ़ करे वायलेंस तक चली जाती हैं बातें. तो हमारे यहाँ एक टॉलरेंस की कमी, और दूसरा ये इस चीज़ की कमी ज़रूर है कि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते, और स्पेस देने में हम बहुत टाइम लगाते हैं.
2: कनेक्टेड होना बड़ा ज़रूरी है एक दूसरे के साथ, और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. और इसमें सबसे बड़ा जो है एक इशू की यही है कि हम बहुत सारी फैमिली है। अब मैं इसमें एक और हमारा भाई बताऊंगा, असल में फैमिली एजुकेट नहीं है। फैमिली ये सोच देगा हमारा बच्चा डिसेबल है, पहले तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, उसको एक साइड में, अगर कर भी सकता है इनके लिए कुछ स्पेशल इदारा देखा जाए। और ये उनके भी कुछ जगह पे ऐसे है कि कुछ इदारे भी ऐसे हैं जो उनको रिस्पॉन्स ऐसा देते हैं, उनके पास अगर कोई डिसबिलिटी के साथ चला जाता है तो वो यही कहते हैं कि इनका तो हमारे मुताबिक ना इनके लिए वाशरूम है, ना हमारे मुताबिक इनके लिए उस तरह की क्वालिफिकेशन है, या इनका दिमाग पता नहीं किसी और तरह का है, इनको स्पेशल टीचर चाहिए। मैं नहीं समझता कि इनको भी अल्लाह ने वही दिमाग दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं, और वो अल्लाह की ज़ात जब किसी को बनाता है तो बेहतरीन तहलीकार है। और बस ये एक चीज़ है, बड़ा एक इशू है जो मेजर चैलेंज है।
1: बेशक ऐसी है जी। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं जिनका हाँ कोई स्पेशल पर्सन पैदा होता है तो उनका रिस्पांस कैसा होता है आपके ख्याल में?
2: इसका सबसे बुरा एक्सपीरियंस हमें मिला है मोस्टली लोगों का कि इनमें सबसे पहले तो वो ये चीज़ को छुपाते हैं, वो बताते ही नहीं है कि हैं, फैमिली वगैरह भी उसकी भी, और उसके अलावा अगर बताते भी हैं तो फिर उसके लिए उसको ये है कि उसको हर चीज़ से बेदखल किया जाता है, ना उसको डिस्कशन में लेके आना पसंद करते हैं कि यार इसने क्या मशवरा देना है। एक होते हैं ना घर में मुशावरत होती है, चीज़ें होती हैं, उसमें भी वो नहीं आएगा, और बाकी चीज़ों में हर चीज़ से पीछे रख के लोगों से माशरे से भी छुपाना, अगर हम भाई लोगों को पता चल जाएगा लोग क्या सोचेंगे इनके घर में कोई बीमारी है या कोई इस तरह की चीज़ है, और एक ये इशू होना, दूसरे नंबर पे ये कुछ कर नहीं सकता, एक क्लियर है कि इनके माइंड में। अब तो हमने जितनी एक आवाज़ उठाई अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और हमारे पर्सनल डिसबिलिटीज आज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सारे बड़े बड़े वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं डिसबिलिटी को, वो चाहे आप इसको देख लें स्पोर्ट्स में दे लें वहाँ बहुत आ गए हैं, एजुकेशन में दे लें वहाँ बहुत आ गए हैं, स्किल में आ गए हैं, बस इनको एक फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़रूरी है, फैमिली क्योंकि उनकी बैकबोन होती है। मेरे समझता अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरे पीछे जो है कि मेरी माँ का या बाप का हाथ है, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता था तो मेरे वाले साहब के हाथ में एक डंडा होता था, वो मुझे वो इतनी पिटाई करते थे तो अगले दिन सोच भी नहीं सकते थे। पर आजकल वो नहीं है कि वो बच्चा पढ़ लिया तो ठीक है, ना पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको रोटी देनी है। वो सबसे बड़ा इश्यू होता है जब माँ बाप खुदा ना वास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, और जो फैमिली है उनके लिए वो एक बच्चा जो संभालना वो अजाब हो जाता है, और वो सारे के सारे कहते हैं या अल्लाह इसको उठा ले, या तो उसको एक रोटी वगैरह मिलनी, वो भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि बहन भाई अपने अपनी ज़िंदगी में हर बंदा मसरूफ़ है, शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, मामलात हो गए हैं, उसके बाद हमने बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऐसी देखी हैं जो एक कमरे में महदूद हो गए, वो ज़ाय हुए, वो बहुत कुछ कर सकते थे हमारी सोसाइटी के लिए, पर उनको वो अपॉर्चुनिटी वो मौके नहीं मिल सके, जिसकी वजह से वो बेचारे एक ही जगह पर रह रह के टोटली वो डिप्रेस हुए, वो एंजाइटी में चले गए, वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई।
1: नहीं बिल्कुल जी, वालदैन की सपोर्ट बड़ा मैटर करती है, और आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि कुछ लोग बल्कि कई लोग ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा स्पेशल पर्सन फैमिली में पैदा हो गया है तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह कोई लेसर बीइंग है, और उसको अपने फैमिली के साथ लेकर चलना वो इतना पसंद नहीं करते लोग। और इसकी एक एग्जांपल मैंने भी आपसे शेयर करी जब मुलाकात हुई आपके ऑफिस में, एक मेरे दोस्त थे स्कूल के, इनके साथ फैमिली टर्म्स भी थे, और अचानक पता चलता है एक दिन के जी उनके बड़े भाई हैं भी हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो मैं हैरान था कि ये बड़े भाई कहाँ से आ गए अचानक, तो पता चला कि ही वॉज डिसेबल्ड और उनको गाँव भेज दिया गया था, उनको सबसे छुपा के रखा गया था, और उनकी आज अचानक डेथ हो गई। तो इट वॉज अ सरप्राइज कि इतने सालों की दोस्ती और फैमिली टर्म्स के बाद मुझे पता चला कि उनका एक बड़ा बेटा भी था। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। एक्सेप्टेंस का मसला वही फिर से रिपीट करूंगा, एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ, और हम समझते हैं कि अगर कुछ डिफरेंट है तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। तो इसके साथ ही वक्त हुआ एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी ज़िंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोज़े सामईन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद करार हैदर। आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आते हैं जिनका हमारी फैकल्टी यानी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक होता है और ये 7 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल। मैं इब्तदाई में बता चुका हूँ पहले प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जो डिपार्टमेंट मौजूद है वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। उसके तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं MLT। उस प्रोग्राम के बारे में हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमानान मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर सबा कबीर को, मैम खुशामदीद, और उनके साथ मौजूद हैं मिस इकरा जमील।
3: थैंक यू सर।
2: जी मौजूद सामईन, बगैर किसी वक्त ज़ाया किए मैं बढ़ूँगा डॉक्टर सबा कबीर की तरफ, उनसे इस्तदा करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताएँ।
4: Thank you so much, sir, for inviting me to this show. I am Dr. Sabah Kabir, and meri jo PhD hai wo microbiology and molecular genetics mein hai from the University of the Central Punjab, the Department Institute of Microbiology and Molecular Genetics. Actually, my research interest lies in the infectious diseases with the main focus on the multi-drug resistance of the microorganisms. And I'm also a certified trainer of the biosafety and the biosecurity. And I'm working here in the UCP as assistant professor microbiology.
2: आपने कब UCP join किया था as a teacher?
4: Back in 2019, September में.
2: Right. So अब मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। Miss Ikra Jameel, अपने बारे में कुछ बताइए।
3: Thank you, sir. Myself Ikra Jameel, and I'm working as a lecturer in the Department of Microbiology. And I joined UCP back in October 2022. I am basically bachelor's in medical lab technology with a master's in medical lab sciences from University of Health Sciences, and now I am PhD microbiology scholar from Government College University Lahore, and I have more than 7 years of teaching experience in medical lab technology program.
2: बहुत खूब। मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा मतलब डॉक्टर सबा कबीर से है, कि आपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए।
4: जी सर, सबसे पहले तो MLT है क्या? MLT इज़ बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो वी हैव ए वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, मोर देन 11 टीचर्स आर PhD होल्डर्स, जिनमें हमारे HOD हैं डॉक्टर आतिफ अमीन। हिज एक्सपर्टीज आर इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो मेजर उनका फोकस है, ही इज़ वर्किंग ऑन द हैवी मेटल रेजिस्टेंस एंड जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टियोमिक एंड प्रोटियोमिक लेवल्स। हमारे पास डॉक्टर मदीहा खान हैं जो कि प्रोबायोटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। डॉक्टर समन इकराम हैं, वो उनका काम माइक्रोबियल बायोफिल्म्स एंड जीन एक्सप्रेशंस पर है। डॉक्टर नमना अनवर हैं जो कि कैंसर बायोलॉजी पे काम कर रही हैं। डॉक्टर मोहसिन तसव्वुर माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन गुलजार हैं हमारे साथ जो कि बायो रेमिडिएशन एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नाइला हैं, अगेन शी इज़ वर्किंग ऑन द कैंसर बायोलॉजी, और मिस इकरा जमील हैं जिनका काम मोलेकुलर मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर ताहिर इसहाक हैं जो कि फूड माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रहे हैं।
2: जी आपने बड़ा तफसीली तारुफ करवाया। अब मैं मिस इकरा जमील से गुजारिश करूँगा कि अपने शोबे के बारे में बताएं।
3: सर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशन। जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी है, जैसे इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, तो अब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो ये एक्चुअली द बैकबोन ऑफ मेडिकल फील्ड। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेन करते हैं टू वर्क एज अ प्रोफेशनल्स इन द लैब्स एंड टू बी अ पैथोलॉजिस्ट और टू बी अ टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें हम पेशेंट्स के सैंपल्स को डायग्नोस करते हैं, जिनमें हम पेशेंट्स के सैंपल्स के टेस्ट परफॉर्म करके उन्हें डायग्नोसिस तक लेके जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान्स को फाइनल करते हैं। तो विदाउट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इट विल क्वाइट बी इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू रीच टू द एग्जैक्ट डायग्नोसिस। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इट सेल्फ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, नॉट ऑन द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एज इंटरनेशनली इन गल्फ स्टेट्स। तो इसलिए इसका जो स्कोप है, इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, एक्रेडिटेशंस हैं, एक बहुत शानदार किस्म का करियर रीच है इसके अंदर। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं अप टू PhD लेवल, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं।
2: बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा कबीर, आप बताइएगा कि अपने स्टूडेंट्स की इस्तेदाद को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में क्या ऐसे तरीक़ाकार अपनाते हैं जिनसे स्टूडेंट्स अपडेट होते रहें और जदीद तहकीकात से भी उनका रابطہ रहे।
4: सर, इसमें एक तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों की जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, हम सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स अरेंज करवाते हैं, जो भी हमारे करंट टॉपिक्स हैं या जो भी हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर उनको अप टू डेट रखना। देन उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद हैं जिसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा हम उनको डिफरेंट मीन फॉर द एक्सपीरियंस थ्रू द रियल वर्ल्ड, हम उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाते हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक लैब्स में लेकर जाते हैं वहाँ पे, ताकि वो एक्चुअली किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से वो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, वो उस पर काम कर सकें। फिर उनके डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। तो ये एक सारी चीज़ें जो बच्चों को थ्रू आउट द सेमेस्टर, बच्चों की ये एक्टिविटीज़ हमारे पास चल रही होती हैं। और इसके अलावा बच्चों को इन क्लास भी हम जो भी एक्टिविटीज़, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग करवाई जाती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं असाइनमेंट्स की फॉर्म में, डिस्कशंस की फॉर्म में या क्लास एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, ताकि बच्चे जो हैं वो अप टू डेट नॉलेज रहे और वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी उनकी इन्हांस हो सके।
2: बहुत शुक्रिया मिस एकरा जमील, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOUs भी साइन कर रखे हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि दुनिया में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है?
3: जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमारी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एक्रेडिटेड विद द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, जो कि एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे एलाइड को लेके चल रही है। देन वी हैव MOUs फॉर डिफरेंट लैब्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है हेल्थ रिच लैब्स आ जाती हैं, हार्मोन लैब है, एंड इनके थ्रू हमारे जो हैं वो गलेक्सी लैब्स के साथ हमारा एक MOU साइन है। देन वी ऑल्सो साइन एन MOU विद द मखदूम डायग्नोस्टिक्स, एंड इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ड्यूरिंग सेमेस्टर जो हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट लैब्स में विजिट करते हैं, एंड इन देयर फाइनल सेमेस्टर दे डू इंटर्नशिप्स देयर। इट वुड बी फॉर द 6 month और फॉर अ होल ईयर, एंड इट कुड बी ऑन द स्मॉलर बेस पीरियड लाइक 3 months के लिए, 2 months के लिए। तो इससे उनकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, दे नो द एक्चुअल लर्निंग स्किल्स एंड utilize that MOUs to be a professional in their actual field.
2: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा कबीर, आप बताइएगा कि क्या आप invited speakers भी बुलाते हैं अपने बच्चों की स्किल्स को, अपने बच्चों की नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को इनहांस करने के लिए?
4: बिल्कुल सर, हमारे पास जो इनवाइटेड स्पीकर्स होते हैं वो हम नेशनली एंड इंटरनेशनली दोनों तरह से हमारे पास इनवाइटेड होते हैं। हम इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी बच्चों के इवेंट, हम एक हमारी सीरीज अभी लेटेस्टली हम लोगों ने स्टार्ट की है कि हम जो इंटरनेशनल स्पीकर्स होती हैं उनको हम अपने एज अ गेस्ट लेक्चर्स के तौर पर हम उनको बुलाते हैं ताकि वो लेक्चर्स बच्चों को डिलीवर करें। और फिर नेशनल में हमारे पास जो भी रिनाउंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको हम डिफरेंट सेमिनार्स में बुलाते हैं या इवन उनके साथ लेक्चर्स अरेंज करवाते हैं ताकि वो बच्चों को थोड़ा सा अप टू डेट रखें।
2: जी आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगी?
3: सर बिल्कुल ऐसा ही है, जब हमारे टॉपिक पे डिपेंड करता है कि हम किस करंट इशू को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने फील्ड के जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं एट द प्रोफेसर लेवल, दे आर वेल नॉट साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं अपनी फील्ड में, एकेडेमिया में एज वेल एज प्रोफेशनली लैब्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें जो है एज अ गेस्ट स्पीकर इन्वाइट करते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं एक वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार पाकिस्तान।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाए।
2: एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
3: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

0: Let's get stress-free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है UCP की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियाँ, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीज़ें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
3: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।